पर हमेशा जीत तरमिया दी हुई है, अतरमिया दा हमेशा ही बुरा अंत हुए है। ए शब्द भगत कबीर साहब जी दा उचारिया होया, जिद विच भगत जी बयान करदे ने कि प्रहलाद भगत ने

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बताने लगी। ये जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी है, नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

के चंगा तेरी भगती देवा सहा, जो तू मंगेगा मैं तेनु देंगा, पर एक गल है चंगी मंगदा फल चंगा हुंदा है, माड़ी मंगदा फल माड़ा हुंदा है। हरनाक्ष ने मंगे ना मैं देने मरा, ना रात मरा, ना पानी विच मरा, ना सुखे ते मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश विच मरा, दुनिया का कोई भी हथियार मैनू मार ना सके, ना मैं आदमी कोलू मरा, ना मैं किसे जानवर कोलू मरा, ना किसे औरत कोलू मरा। सारे बार ले ले भगवान ने कहा चंगा भाई, भगती तो कीती सी ते जैसा कोई वर मंगे मैनू देना पैंदा है, ए वर तैनू दिता। हरनाक्ष बड़ा खुश होया, हुण मैं मर नहीं सकदा, मैं जो चाहवा वो करांगा। हरनाक्ष वापस अपनी राजधानी आया, राजधानी उजड़ी देखी बड़ा गुस्सा चढ़िया, बची हुई सेना इकट्ठी कीती, पता लग गया कि मेरी राजधानी इंद्र देवते ने उजाड़ी है, बड़ा गुस्सा चढ़िया। कुछ देर बाद नारद मुनि हरनाक्ष की घरवाली कह दो ते प्रहलाद भगत नू लैके उत्थे हाजिर होए। नारद मुनि नू हरनाक्ष ने नमस्कार कीती। नारद मुनि कहन लगे हरनाक्ष ऐ तेरी अमानत, ऐ तेरी घरवाली, ऐ तेरा लड़का, इन्हां नू सांभ लै ता कि असी अपने आश्रम वापस जाइए। हरनाक्ष बड़ा खुश होया अपनी घरवाली नू मिलके।

चढ़ाई की थी, वर मिले सन, देवते एदा मुकाबला ना कर सके, देवत्या दा बहुत बुरी तरह हरनाकश ने नाश किया, इंद्र देवता अपनी नगरी छड के पहाड़ा वाल भज गए, हरनाकश की जित हुई, हुण हरनाकश ने वापस अपनी राजधानी आके ये ऐलान करा दिता, आज तो बाद किसी ने परमेश्वर का नाम नहीं जपना, जिन्हें भी नाम जपना है हरनाकश का नाम जपना है, यह ही कहना है जले हरनाकश, हले हरनाकश, हैप्पी हरनाकश, होसी भी हरनाकश, पानी उच भी हरनाकश, धरती ते भी हरनाकश, हैगा भी हरनाकश, ते रवेगा भी हरनाकश, ये अपना नाम जपान लग पे आ, मंदर बंद करा दिते, जेड़ा इहदा नाम नहीं जपदा उसनू या ते कतल कर दिता जांदा है या सख्त सजा दिती जांदी है। लोग डरते ने, राजा है सजा दिंदा है, बहुते लोग डर के इहदा नाम जपन लग पे, ते बहुते लोग जेलां विच बंद पए ने जिन्हां दा भरोसा रब ते पक्का है, पर अक्सर भरोसा पक्का ना होवे इंसान जुल्म अगे कई वारी झुक जांदा है, बहुते लोग डर के इहदा नाम जप

विष्णु भगवान नु ए भगवान हर नाकुश बड़ा जुलम कर रहे है, मंदिर बंद करा देते, अपना नाम जपा रहे है, दुनिया बड़ी दुखी है, असी भी दुखी है। ता भगवान ने कहा तुसी घबराओ ना, जदू को जुलम कर दे एक वरी वो अत जरूर चुक दे, पर हर जुलम दा अंत है, कदी बुरा समा हमेशा रहिंदा नहीं। हर नाकश दा अंत होवेगा, सारिया ने कहा भगवान इस तरह अंत होवेगा। ता भगवान ने कहा सुनो।

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली इसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष के मरण दे नाल ही

हो जाए प्रहलाद बुलाए वेद ताए संडे मरके ने जदू शिकायत की थी ऐ राजन तेरा अपना लड़का तेरा नाम नहीं जपदा ताओ से वक्त

प्रहलाद नूं पानी विच डोब के मार दियो। सिपाहियां ने प्रहलाद नूं फड़िया, हाथ पैर बन के उच्ची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नूं चुक के नदी विच सुट दे

खत्म करना है किस तरीके भी खत्म किया जाए। ताहर नाटक दी पैन जिसका नाम होलका सी, होलका नु ए वर सी के ओ साड़ नहीं सकदी। होलका नहीं

गोदी विच लै के बह जावांगी। मैनू वर है मैं ते सड़ना नहीं पर लाल सड़ जावेगा। इस तरह कीता गया, लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता, लकड़ां दे ढेर ते

ने कुछ तमाशा देखने वाले, कुछ लोग रब का न्या देखने वाले कि देखो रब भगतां दी पैज रखदा है कि नहीं। कुछ अरदासां पै करदे ने, ऐ भगवान प्रहलाद दी रखिया कर, इन्हां दुष्टां नूं ए दस

मैं भी देख रहा तेरी रखिया करन वाला मेरा की बिगाड़ लैंदा है ते तेनु की मैं बचांदा है। एक थम तत्ता कीता गया हरनाकश ने कहा जे तेनु अपने रब दे भरोसा है इस तत्ते थम नु जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पे है। ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली

धरती से हैं, ना आकाश से, ना तो पानी बीच हैं, ना सुखे से, ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गिनाए ते नाले के देख ले, ना मैं औरत हां, ना आदमी। सारे वर पूरे

जिन्ने वर में मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आ के ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे

अनेका कष्ट प्रहलाद दे दूर कीते ते जेड़ा भी ओदी बंदगी करदा है इसी तरह उन्हां दे दुख परमेश्वर दूर करदा है ते अतर मियां दा

भगत कबीर सब नाल भी होया। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी, उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करदा। कुछ लोका ने कन भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर नु अपने दरबार च बुलाया। भगत कबीर साहब बनारस विच रहा करदे सन। सिकंदर लोधी दे सामने होए, सिकंदर लोधी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, उदे नाम कई नहीं, किसे नाम नाल भी उनु याद कर लो।

अपने सिपाहियां नूं इस कबीर नूं पढ़ो, इहदे हथ पैर बन्नो, इहनूं गंगा विच डोब के मार दिओ। इस गल नूं

पर मैं बड़ा हैरान होया इना लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनू डोबो।

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाह नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हेमकुंड दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदियां सेवा सिमरन परपकार करदियां जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदियां उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्त। ते फिर जी करदा है कि होर जपां, जप जप के समा बितावां। इसलिए ये अरदास करदे हन।

ठंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया। वो सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

गिदड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह ने

सुखरे, हरख सोग, हान मिरत, दुख सुख, चित समसर, गुर मिले रहाओ। जव लव हाउ किच सोचो चितवो, तव लव दुखन परे। जौ किरपाल गुरपूरा पेटिया, तव आनंद सहजे। जेती स्याणप करम हों किए, तेते बंद परे। जौ साधु कर मस्तक धर्यो, तब हम मुकत पए। जव लव मेरो मेरो करतो, तव लव बिख केरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए। हां जी, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए। जव लव पोट उठाई चलियो, तव लव डान परे। पोट डार गुरपूरा मिलिया, तव नानक निरपए। सो देखण नूं तां प्रतीत आउंदा है कि उस दी परवरिश उस दे मां बाप कर रहे हन, पर असल विच ए परवरिश अकाल पुरख दे हुकम दी गुजी सहज चाल दी पिरम खेल है। हां जी, जे मोह ममता रब ही ना पांदा, मां तां कित्थों प्रतिपालना कर दी। सो देखण विच तां प्रतीत आउंदा है कि बच्चे दी परवरिश उस दे मां बाप कर रहे हन, असल विच ए परवरिश अकाल पुरख दे हुकम दी गुजी सहज चाल दी पिरम खेल है। ते इस गुजे भेद नूं कोई विरला गुरमुखी जाणदा बुझदा ते पहचानदा है। दूजे लफ्जां विच इलाही सुखदाई ते कल्याणकारी प्रेम स्वप्ना दी गोद विचों निकल के बच्चा अपनी होमे दे भरम भुलावे विच ठोकरां खांदा ते जमां दे वस पैंदा है। सो इस तब्दीली दा मुढ कारण है कि भोलेपन दा त्याग, होमे दा भरम, मैं मेरी दा अहसास ते सियाणपां चतराइयां दा आवेश ही है। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जिथर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। सो पालन पोषण दी ए कठिन क्रिया भी प्रेम रस विच लीन होई मां नूं आनंदमई लगदी है। घर दे कम्मां कारां विच गलतान मां अपने बच्चे विच ही लिव लाई रखदी है। चुल्हे विच अग बालदी, चक्की चौंदी, पसीने दी बो नाल लिबड़ी तिबड़ी मां दी गोदी विच बच्चा रुड़ रुड़ के आपे आ जांदा है ते दुध चुंगण लग पैंदा है। ते मां दे प्यार दियां अमृत घोटां पड़दा पड़दा सब कुछ भुल जांदा है। जेकर बच्चा खेड़दा खेड़दा सड़ियांद वाली थां जां गंदले पानी वे डिग पवे या गंदा हो जावे, उदे सट वजे, मां भावे सजी तजी पूरा हार शिंगार करी बैठी होवे, कीमती तो कीमती कपड़े पाए होण, पर अपने लाल जिगर दे टोटे दी आवाज सुन के उस रोंदे कुरलांदे लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं अपनी हिक नाल ला लवेगी ते प्यार नाल चुम चट के रबी प्रेम दियां अजली चरनाटा राही बाल नूं दुध चंगाउंदी है। फिर उसनूं लख लख असीसां दे के लोरियां गा गा के थापड़ थापड़ के सुआउंदी है। सो मां दी इस सेवा भावना विच ना कोई स्वार्थ है ते ना ही मुक्ति दी इच्छा, सगों मां तां प्यार विच आपा गवा के उस सिरजणहार दे हुकम दी कार कमाउंदी है। हां जी, मां दी इस सेवा भावना विच ना कोई स्वार्थ है, ना ही कोई मुक्ति दी इच्छा है। मां तां प्यार विच अपना आपा गवा के उस सिरजणहार दे हुकम दी कार कमाउंदी है। ए अलौकिक इलाही प्रीत करिश्मा है। ए तां इक्को ही करिश्मे दा जिक्र कीता ते जदों असी हुकम नूं बुझ लिया, फिर सृष्टि विच जरे जरे विच जदों हुकम देना करिश्मिया नूं असी माणांगे, कितने विस्मादित ते आनंदमई होवांगे। ए तां उस वेले दी गल है जदों हुकम नूं बुझ लिया। सो आओ महापुरखां दे नाल हुकम दे लिखे नौ लेखां नूं लै के जाइए। हुकम दे विषय ते उहनां दी आप बयान कीती होई कैसेट 7 नंबर या पहला वॉल्यूम महापुरखां दे बचनां दी उस विच दर्ज है।

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब नेजा, तफंग तीरो तफंग बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धड़क धार अणियर घनसबान और उसने तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वो वज जानना ते मुड़के कढ़े जा सकते ते आदमी बच सकता, पर अणियर तीर जड़े ने वो बार नहीं आओगे, जदों एक बार अंदर तस जानना जदों खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी, ओदिया दो कड़िया होंदिया एवं मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहदिया हूं आजा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया, पता की हाल है, सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वरतना है, दान दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई सी, एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वह जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाड़ी भी सिखा चट फूकते थे, वो उन्हें अग लाती उत्थे सड़न बह गए, जिहड़ी बीबी जी सीगे वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी जाके हम वीसीआर वेखना सी एक कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी जा गहने पाए सी, उन्हां दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच शरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरी जाके छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साढ़े ते उपकार किए, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हम कर ली, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया करलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नू आ दुष्ट जड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे क्या उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड़ के आओ, उन्हें पंडितों ने अज उन्हें अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगियां करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कहीं नहीं जाती, लेकिन मैं कहना कि सिंगो ए पांच शस्त्र रखो धड़क धार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल ही आंदरा कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हों सरिए लैके आए ना मारन वह सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा ए भुआ के सरिए के मारी दे वह फिर एवं वल पा के सरिए काबू कर लेंद खिच के सरिया अगले का अपने हाथ में फड़ लेता उन्होंने हथे कर सकता एक ही सुटी का बस फिर बोरे जो दिया, इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो ये तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र के धार नहीं बनना डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ए खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का, खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी सिखा सकते और भी किसी चीज खंडे का, खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा, खंडे का अर्थ है मौत, तो महाराज ने उन्हू पानी घोल के सिख न प्यारता मौत न घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत न घोल के पी गया, तो दुष्ट कहता मैं तेन वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਵੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕਲ ਰਹੂ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो, बिना शास्त्र के संग नर भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वो भज गई। ते दो चार साडे सिख विचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल तो उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्हें हाथ ही फड़ाते से, और डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असं डे सा कीर्तन कर बाबे नहीं साडे, राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे सार देना, तियां तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज इन्हां नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब थापी दित्ती, और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। महाराज ने प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वो इन्होंने नाल हो गए, और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह बाणी में पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तो कच्छ तुरंग स्पच्छ बनो तरकार कृपाण कम पावेंगे, निक्षे जिम केवर पर्वत ते ता सौ दिवाले पावेंगे, फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक टुट, निक्षे जिम केवर पर्वत ते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वो जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है, उन्होंने फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर करवा, ए बाबे का छाल मार के शीशर के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, तो जकारे छड़ते पज पै पज के वह 5-7 पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे आने, जदों उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4 लारियां सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोगे गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे वाले ए वेखन वाले भजन, तो फिर एक

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासे देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा

जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबस हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उस रहे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चियां नू जरा इना दी गल्लां दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

आप हाजरियां लाओगे तो किसी गुरमुख परिवार ने इच्छा प्रगट की थी कि मेरी तारवी कीर्तन का वस्तुआ कर दो जी। कारगर अंदर धर्मसाल हो सकता है, कारगर अंदर भाई साहब जी लिखते धर्मसाल फिर वसोआ किड़ा है होवे कीर्तन सद। तो गुरु प्यारे आप जी ने उन्होंने दस प्यारा दस देंगे तो कल पांच टू छह बजे तक आसा जी दीवार का कीर्तन उस गुरु परिवार के ग्रहण से हो रहे हैं तो शामा इसी तरह इसे कीर्तन होगा और प्यार सारे

0: पूरे की कृपा। तीर मारो ने ताना मारो,
1: ये ओह जो दे ये पूरे रेत जाओ गाना हो। गुरु ग्रंथ साहिब की ये वाणी आप उच्चारण कर लें, आखो सतनाम।